0: कई समय टाइम में रख लाए
1: आ मैं रख रहे
0: अभी में क्या
1: और सारे की तो ठीक है बात तो पर करने से ना कि तो जाने के रिज़ो पर आज कि हाँ और अगर नो मोर कि तो क्यों आउट माँ अभी तो क्यों नो मोर आई हमें के तलाक इन तख्ता ये बने हैं तो तख्ती बस अभी तो हमें के इधर में कि तो एक चीज़ किया ना हमें से पंगा तो हूँ कई बार
0: Anu go.